0: শুনছেন নমস্কার কলকাতা,
1: নমস্কার কলকাতা
0: 107 FM রেইনবোতে। নমস্কার কলকাতা,
1: নমস্কার কলকাতা,
2: একদম নমস্কার কলকাতা শুনছেন আপনি। মোয়া রয়েছে আপনার সঙ্গে, আর
3: দ্য কমনওয়েলথ গেমস।
4: स्कॉटलैंड की ठंडी हवाओं में इन दिनों एक अलग गर्मी है, मुकाबलों की, उम्मीदों की और उन सपनों की जो भारत से हजारों किलोमीटर दूर आकर सांस ले रहे हैं। एक वक्त था जब हिंदुस्तान की पहचान किसी और के शासन के साए में डूब गई थी, लेकिन उस दौर ने हमें एक चीज जरूर सिखाई, अपने हक के लिए खड़ा होना, अपने हिस्से की जगह मांगना और उसे अपने दम पर हासिल करना।
5: आज वही भारत उसी दुनिया के सामने अपने खिलाड़ियों के दम पर खड़ा है, बराबरी से आंखों में आंखें डालकर। और जब कोई भारतीय खिलाड़ी यहाँ पोडियम पर चढ़ता है तो सिर्फ एक पदक नहीं जीतता, उस छोटे से गांव, उस कस्बे, उस घर तक भी एक भरोसा पहुंचाता है, जहां बैठा कोई आम इंसान शायद पहली बार सोचता है हम भी किसी से कम नहीं।
4: और इस बार शायद इस भरोसे को नए चेहरे मिले हैं। As you know, popular sports like badminton, hockey, cricket, table tennis and wrestling are not a part of Commonwealth Games of the 22nd Commonwealth Games in Glasgow. But the absence of these sports have been a blessing in disguise for some of the lesser known sports. Para power lifting, artistic gymnastics, swimming and lawn bowls are now making headlines, and our athletes representing India in these sports are showing what they are capable of.
5: ये वो खेल और खिलाड़ी हैं जिन्हें अक्सर बड़ी सुर्खियों के पीछे जगह बनानी पड़ती थी। इस बार मंच उनके सामने है, अब देखना ये है कि कौन इस मौके को दोनों हाथों से थामकर सुर्खियां अपने नाम कर लेता है। तो आइए जानते हैं राष्ट्रमंडल खेल 2026 के दूसरे दिन कौन कौन से खिलाड़ियों ने सुर्खियां बटोर ली है।
4: सबसे पहले बात पैरा पावर लिफ्टिंग की। पैरा पावर लिफ्टिंग में खिलाड़ी सिर्फ वजन नहीं उठाते, वो उन सीमाओं

0: को उठाकर एक तरफ रख देते हैं, जिन्हें दुनिया अक्सर उनके सामने खड़ा कर देती है। भारत में पैरा खेलों ने पिछले कुछ सालों में अपनी अलग पहचान बनाई है और शायद इस मंच पर एक और जीत किसी को ये यकीन दिला दे कि उसकी ताकत उसकी कमजोरी से कहीं बड़ी है। इसका उदाहरण स्थापित किया भारत के झंडू कुमार ने। पुरुषों की पैरा पावर लिफ्टिंग में 72 किलोग्राम के भार वर्ग वाले झंडू कुमार ने 190 किलोग्राम वजन उठाया, जिसके चलते 130.9 अंक हासिल किए। इसके साथ ही झंडू कुमार को कांस्य पदक हाथ लगा और कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की पदक तालिका में भारत का खाता खुला। ग्लासगो जाने से पहले ही आकाशवाणी से हुई खास बातचीत में झंडू कुमार ने बताया था कि उनके हौसले बुलंद हैं और वो अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए तैयार।
1: पिछली बार भी हमने कोशिश किए थे, दिल से कोशिश किए थे कि अच्छा ही करेंगे। एशिया चैंपियन भी अच्छा किए और वर्ल्ड कप में भी अच्छा किए, इस बार कॉमनवेल्थ में भी अच्छा करेंगे।
2: इतना वजन उठाने के टारगेट रखा है, वजन उठाने का?
1: सर देखिए, अभी वहाँ जाएंगे, वहाँ वार्म अप एरिया में जो पता लगता है कि हम कितना, मतलब यहाँ तो 210-220 कर रहे हैं, मगर वहाँ मौसम के हिसाब से थोड़ा देखा जाता है वहाँ पे।
0: और झंडू कुमार ने कर दिखाया भी। पैरा पावर लिफ्टर से शानदार प्रदर्शन की उम्मीद हम सभी को थी। नई दिल्ली में हुई सेंड ऑफ सेरेमनी दौरान ही कोच राजेंद्र सिंह रेहलू ने इसकी भविष्यवाणी कर दी थी।
3: कॉमनवेल्थ में अच्छी संभावना है, हमारे सारे खिलाड़ी फिट है, हम कोशिश है हमारी कि इस बार पावर लिफ्टिंग में अच्छे मेडल आएंगे। और बाकी जैसे हमारे प्रेसिडेंट साहब ने बोला ही है, देवेंद्र जी ने, कि बहुत बड़ा दल जा रहा है इस बार, पहली बार इतना बड़ा दल जा रहा है, तो एक नया रिकॉर्ड बनेगा, इंडिया बनाएगा, मुझे श्योर है कि हम जीत जाएंगे।
0: ये पदक पुरुषों की हैवी वेट कैटेगरी में आया। इसी कैटेगरी में भारत के सुधीर ने भी हिस्सा लिया और 91 किलो के सुधीर ने 183 किलो का भार उठाया और 114.1 अंक हासिल किए। सुधीर को पदक भले ही ना मिला हो, लेकिन जब जब एक पैरा एथलीट शारीरिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना कर कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े मंच पर पहुंच भारत का प्रतिनिधित्व करता है, तो वो समाज में सभी के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाता है।
4: A quintessential example of this was given on Friday by Ashok in men's para power lifting. Ashok registered his personal best by lifting an impressive 200 kgs and earning 143.8 points. Alas, he finished fourth and missed out on a podium finish.
0: In the same event, Paramjit Kumar lifted 176 kgs and finished 7th.
4: वहीं महिलाओं में उम्मीदें जसप्रीत कौर और सुमन देवी से थी।
5: मैं जसप्रीत हूँ, पैरा पावर लिफ्टर। अभी मैंने रिसेंट हमारा एशियन चैंपियनशिप हुआ था, वहाँ मेरे ब्रॉन्ज मेडल लिया और उसके बाद अभी अच्छी परफॉर्मेंस बढ़ी है, इसे मुझे उम्मीद है कि मैं मेडल लेके आऊँ।
0: हाउएवर, इट वॉज अगेन अ स्टोरी ऑफ सो नियर येट सो फार। जसप्रीत कौर ने 100 किलो वजन उठाया, लेकिन उसके बावजूद वो चौथे स्थान पर रही और पदक से चूक गई। उनके बाद सुमन देवी ने 103 किलोग्राम भार उठाने के दो प्रयास किए और मेडल पर निशाना लगाना चाहा, लेकिन उनके दोनों ही प्रयास असफल रहे और उन्हें छठे पायदान से संतोष करना पड़ा।
4: ऐसी ही कहानी रही कस्तूरी राजमणि की भी, जिन्हें 3 असफल प्रयासों के बाद प्रतियोगिता से बाहर हो जाना पड़ा।
0: अब बात करते हैं बॉक्सिंग रिंग की, जहां पर हर एक पंच भारतीय मुक्केबाजों के हौसले, उनकी तैयारी और उनके जोश को बयां करता है। भारत के जादूमणि सिंह ने इसी का परिचय देते हुए पुरुषों के 55 किलोग्राम भार वर्ग में मेजबान टीम के आरन कलन को सर्वसम्मति से मात दी, यानी पांचों के पांचों जज का फैसला जादूमणि सिंह के हक में रहा। इसके साथ ही जादूमणि ने राउंड ऑफ 16 में प्रवेश पा लिया है। अपना पहला कॉमनवेल्थ गेम्स खेल रहे जादूमणि क्या इस बार इतिहास रचेंगे?
4: अब बात करते हैं लॉन बॉल्स की, जहां पिछले संस्करण में भारत ने 1 गोल्ड 1 सिल्वर जीता था। इस बार मानो हमारे एथलीट स्थान कर आए हैं कि लॉन बॉल्स की गूंज भारत की हर गली में सुनाई देनी चाहिए। पिछली बार की सफलता को देखकर लॉन बॉल्स के खेल में शुरुआत करने वाले पुतुल सोनेवाल ने शुरुआत ही इस प्रकार की है।
6: नमस्कार, मैं पुतुल सोनेवाल असम से हूँ। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरा ये फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम है।
0: ऑन डे 1 पुतुल सोनोवाल डिफीटेड आउटडोर वर्ल्ड चैंपियन रायन बेस्टर ऑफ कनाडा। ही कंटिन्यूड द विनिंग वेज ऑन डे 2 एज वेल। इन फ्रंट ऑफ हिम

0: the challenge of Selick Alexander of Falkland Islands. In the first set, Sonowal was trailing, but he came back from behind to tie that set and then registered an emphatic victory in the second set.
1: जैसा आप जानते हैं कि 2022 में भारत की महिलाएं लॉन बॉल्स में स्वर्ण पदक लेकर आई थी। उस टीम का हिस्सा रही रूपा रानी टिर्की और पिंकी की जोड़ी ने विमेंस पेयर में अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा है। पहले दिन माल्टा को टाईब्रेकर में हराने के बाद दूसरे दिन इस जोड़ी ने दक्षिण अफ्रीका को दो सीधे सेटों में मात दी। इनका अगला मुकाबला टोंगा से आने वाली मिलिका नेथेन और पेरिस बेकर की जोड़ी से है।
0: पिंकी ने तो ग्लासगो जाने से पहले ही बता दिया था कि भले ही इस बार ये प्रतियोगिता पिछली बार की तरह नेचुरल ग्रास के बजाय कारपेट वाली घास पर हो रही हो, लेकिन उनका इरादा पोडियम फिनिश से कम का नहीं है।
2: हमने जो हिस्ट्री बनाई थी, क्रिएट की थी, हम इसको रिपीट करने की कोशिश करेंगे। किसी न किसी तरह किसी भी मेडल पे पोडियम के लिए जरूर आएंगे कि हम अपना देश को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो भी लोगों ने हमारे से एक्सपेक्टेशन रखी है, उस एक्सपेक्टेशन को हम फुलफिल कर पाए।
1: मेंस 100 मीटर फ्री स्टाइल पैरा स्विमिंग के फाइनल में क्वालिफाई होकर पहुंचे रवि वीरा वेंकटा भवानी कार्तिक टॉप थ्री की रेस से कुछ पीछे रह गए। उन्होंने मेंस 100 मीटर फ्री स्टाइल के फाइनल में चौथे स्थान पर और वहीं उसी प्रतिस्पर्धा में अली इमाम ने सातवें स्थान पर खत्म किया और इसी के साथ दोनों खिलाड़ी पदक की रेस से बाहर हो गए।
0: दूसरी तरफ पुरुषों के 50 मीटर बैक स्ट्रोक में श्री हरि नटराज सेमीफाइनल तक तो जरूर पहुंचे, लेकिन अपनी सेमीफाइनल की रेस में उन्होंने 25.29 सेकंड का समय लिया, जिसके चलते वो 8 स्विमर्स में सातवें पायदान पर रहे। इसी प्रतिस्पर्धा में दक्षिण अफ्रीका के पीटर कुज़िया ने 24.29 सेकंड का समय लेकर नया गेम्स रिकॉर्ड स्थापित किया। जिमनास्टिक्स में तपन मोहंती, स्वातिश केपी, तपेश्वर नाथ दास और योगेश्वर सिंह पुरुषों के टीम फाइनल और इंडिविजुअल क्वालिफिकेशन राउंड में भारत का रिप्रेजेंटेशन करने उतरे। प्रदर्शन सराहनीय रहा, लेकिन मेडल तक का सफर तय नहीं कर पाए।
1: आज तीसरे दिन यानी शनिवार 25 जुलाई को मंच दोबारा सजेगा। आइए जानते हैं कौन कौन से खिलाड़ी भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं।
0: 22वें कॉमनवेल्थ गेम्स में पहली बार 3x3 व्हीलचेयर बास्केटबॉल में टीम इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए उतरेगी भारतीय महिला टीम। 3x3 व्हीलचेयर बास्केटबॉल यानी तीन खिलाड़ी एक बास्केट और व्हीलचेयर पर दौड़ता पूरा मुकाबला। यहाँ रफ्तार भी है, टक्कर भी है और हर शॉट के साथ जीत की उम्मीद भी। भारतीय टीम में शामिल है मीनाक्षी हरिचंद्र जाधव।
3: कॉमनवेल्थ गेम ये बहुत बड़ी गेम है। जब से मैं स्पोर्ट्स में आई थी, मेरा जो भी हेल्थ इश्यू था वो 99% रिड्यूस हुआ है। मेरे भाई को लगता है कि गेम में क्या मिलता है तुमको, उससे अच्छा अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम करेगी। बट कहीं पे भी जाती हूँ, कुछ जीत के आ जाती हूँ तो वो थोड़ा गर्व से बोलता है कि ये मेरे बहन है।
0: लक्ष्मी रायप्पा रायनवर।
4: मैं इंटरनेशनल व्हीलचेयर बास्केटबॉल प्लेयर। मेरा फैमिली बहुत खुश हो, फैमिली बहुत सपोर्ट किया था।
0: रीना रमेश चंद्र गुप्ता।
5: मैंने व्हीलचेयर बास्केटबॉल खेलना शुरू किया 2019 में। इसकी जानकारी मुझे मेरे एक एक्स कलीग से पता चली थी। इट वाज लाइक कि हम एक टीम स्टार्ट कर रहे हैं पुणे में, क्या आप ज्वाइन करना पसंद करोगे। आई नेवर इमेजिन कि जो मैंने एज अ फन ज्वाइन किया था, इट विल टेक मी टू द कॉमनवेल्थ गेम्स।
0: इरेंगबाम रितु चानू।
6: इरेंगबाम रितु चानू, मैं मणिपुर से हूँ।
0: हर खिलाड़ी अपने साथ एक कहानी लेकर आया है, दर्द की, संघर्ष की और उन सीमाओं को पीछे छोड़ने की जिन्हें दुनिया ने कभी उसकी किस्मत मान लिया था।
1: इंडिया विल प्ले देयर फर्स्ट ग्रुप स्टेज मैच अगेंस्ट वेल्स एट द SEC सेंटर।
0: बॉक्सिंग में पुरुषों के 60 किलोग्राम भार वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए उतरेंगे सचिन। राउंड ऑफ 32 में उनके सामने होने वाले हैं कनाडा के कियोमा अल अहमदिया। रिंग में हर पंच के साथ सिर्फ ताकत नहीं, हिम्मत भी परखी जाएगी, क्योंकि यहाँ एक बार कहानी बदल सकता है और सचिन इस बात को बखूबी जानते हैं और इसीलिए डट कर उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारियां की है।
7: तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, बहुत बढ़िया। अपने अपोनेंट्स के सारे उनके वीडियो देख रहे हैं, गलतियों पे काम कर रहे हैं और बहुत अच्छी तैयारी चली हुई है। सभी के गोल लिए आने हैं।
0: एक बार फिर भारतीय प्रशंसकों की नजरें होंगी लॉन बॉल्स पर। एक ऐसा खेल जहां शोर कम है, रफ्तार कम है, लेकिन हर गेंद के साथ जीत की उम्मीद धीरे धीरे अपने निशाने की ओर

0: करती है। पहले दो मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन करने वाले पुतुल सोनोवाल मलेशिया के इज्जत जुल केपले से भिड़ेंगे और जैसा हमने बताया वुमेन पेयर्स में रूपा रानी टिर्की और पिंकी की जोड़ी का सामना टोंगा से आने वाली टीम से होगा।
1: स्विमिंग पूल में भारत के लिए उतरने वाले हैं आर्यन नेहरा और धक्षण शशि कुमार। टॉल क्रॉस स्विमिंग सेंटर में ये दोनों तैराक पुरुषों की 400 मीटर फ्रीस्टाइल प्रतिस्पर्धा में शिरकत करते नजर आएंगे। धक्षण हीट 3 में और आर्यन हीट 4 में हिस्सा लेंगे। यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन कर फाइनल में प्रवेश पाने की कोशिश होगी।
0: फाइनल मुकाबला भी आज ही खेला जाएगा। उसके बाद नजरें होंगी आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स में महिलाओं पर। हवा में उड़ते शरीर, जमीन पर टिकता संतुलन और इन चंद पलों में ताकत और लचक का ऐसा खेल जिसे देखकर आंखें ठहर जाएं।
1: आज इस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करने उतरेंगी प्रणति नायक, निष्का अग्रवाल, प्रोशिता समानता और इशिता रिवाले।
0: चलते चलते रुख करते हैं मेडल्स टैली का। आखिरी समाचार मिलने तक भारत एकमात्र पदक के साथ 9वें स्थान पर बना हुआ है। वहीं कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की पदक तालिका में इस वक्त शीर्ष स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है जिनके पास 4 स्वर्ण पदक, 2 रजत और 4 कांस्य के साथ कुल 10 पदक हो चुके हैं। दूसरे पायदान पर नाइजीरिया है जिनके 3 स्वर्ण पदक और 3 रजत मिलाकर कुल 6 पदक है। ऑन द थर्ड स्पॉट इज होस्ट स्कॉटलैंड विथ 2 गोल्ड मेडल्स एंड 2 सिल्वर मेडल्स, टोटल मेडल्स 4। इंग्लैंड हैज 1 मोर, दे हैव 5 मेडल्स इन टोटल। हाउएवर दे आर प्लेस्ड एट नंबर 4 बिकॉज दे हैव 1 लेस गोल्ड मेडल दैन स्कॉटलैंड। अपार्ट फ्रॉम दीज 4 नेशंस, साउथ अफ्रीका इज द ओनली वन टू ऑल्सो विन अ गोल्ड मेडल। विल इंडिया बी एबल टू क्लाइंब अप द टैली एंड गेट ऑफ द मार्क इन द गोल्ड मेडल एंड द सिल्वर मेडल कॉलम? वी विल नो सून।
1: हर दिन कोशिश जारी है। भारत के एथलीट्स 22वें कॉमनवेल्थ गेम्स में जज्बे और जुनून की कहानी लिख रहे हैं। हो सकता है स्कॉटलैंड की ठंडी हवाओं में भारत को अपना नया सितारा मिल जाए।
0: आकाशवाणी पर लगातार आप कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते रहेंगे। तो सुनते रहिए आकाशवाणी।
1: प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ प्रेरणा और दर्पण की खास रिपोर्ट।
2: Glasgow. The Commonwealth Games.

जी हाँ दोस्तों, 107 FM रेनबो पर आपकी दोस्त सविता एक बार फिर से हाजिर हो चुकी है स्टूडियो में लेकर आपका हमारा सबका पसंदीदा कार्यक्रम नॉन स्टॉप गपशप। जी हाँ, पूरे एक घंटा हम रहने वाले हैं और सुंदर अच्छे बेहतरीन गानों की प्लेलिस्ट बनाकर लाई है आपकी दोस्त। और वादा किया था कि 25 तारीख को मैं आऊँगी और आ गई, लीजिए लेकर नॉन स्टॉप गपशप। तो क्योंकि हमारे दिल की धड़कन आप ही के साथ धड़कती है।

जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का नॉन स्टॉप गपशप पर सविता के साथ। और आइए कार्यक्रम की शुरुआत कर देते हैं आज के अखबार की खास सुर्खी से। जी हाँ, संयम ने 10 मीटर एयर पिस्तल में सिल्वर जीतकर भारत का मेडल खाता खोल दिया है। शुक्रवार को चीन के हांगझोउ में चल रहे ISSF वर्ल्ड कप 2026 में संयम ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्तल इवेंट में सिल्वर मेडल जीतकर भारत के लिए नया पहला मेडल हासिल किया। 22 साल की भारतीय शूटर ने कुल 243.4 स्कोर के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। वह गोल्ड मेडल में सिर्फ 0.2 पॉइंट से चूक गई। हांगझोउ में मिला सिल्वर मेडल संयम का दूसरा ISSF वर्ल्ड कप मेडल है। उन्होंने दोहा कतर में हुए 2025 में भी फाइनल में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्तल इवेंट में सिल्वर मेडल जीता था। चीन की यायो क्यानसुक ने 243.6 स्कोर के साथ पहले स्थान पर रहीं, जबकि ईरान की ओलंपियन हानिया रोस्तामियन 221.0 स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर रहीं। तो हम देते हैं उन्हें ढेर सारी बधाई। और इसके साथ ही कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे और लेकर आएंगे आपके लिए आज के दिन का इतिहास।

0: बच्चियाँ, आपकी ज़िंदगी में यदि कोई भी एक इंसान ऐसा है जिसके मिलने से आपकी ज़िंदगी बाग बाग हो जाती है, गार्डन गार्डन हो जाती है, तो सच में ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में और क्या चाहिए। बस एक ही इंसान काफ़ी है आपको प्यार करने के लिए। यूँ तो सारी दुनिया आपको प्यार करे तो प्यार की जो खुशियां हैं वो कम नहीं होती। दोस्तों, कार्यक्रम में हम आगे बढ़ेंगे और आज के दिन के सेगमेंट की तरफ चलते हैं।
1: आज के दिन,
0: तो आज के दिन क्या खास था जो हुआ? बिल्कुल दोस्तों, कई बार एकांत खामोशी साए साए करती हवा, ठहरा हुआ जीवन, फिर भी वो जो सूने किले होते हैं ना, सूनी खंडहर, सूनी मीनारें, बिखरे हुए अवशेष, ऐसा लगता है कि जैसे वो कोई दास्तां सुना रहे हैं। दफन हुए किस्से भी ऐसा लगता है कि जी उठे हैं, और हर दिन की तारीख, हर दिन का इतिहास अपने आप में समेटे हुए होता है, पूरा का पूरा इतिहास। जी हाँ दोस्तों, सच है कि मैं जब किसी ऐतिहासिक स्थान पर जाती हूँ तो कुछ ऐसी ही एकदम हतप्रद सी आश्चर्यजनक हो जाती हूँ, और एक एक चीज़ को छूकर देखने की कोशिश करती हूँ कि यहाँ कहीं राजा बैठा होगा, यहाँ रानियों का निवास होगा, यहाँ पर कुएं का पानी ठंडा पानी है जो कि कभी यहाँ से लोग अपने प्यास बुझाते होंगे। ऐसे पूरे किले को देख करके या फिर आविष्कारों को देख करके लगता है कि पूरी एक सभ्यता जी उठी है, ऐसा ही लगता है इतिहास को देखकर। तो ऐसे ही इतिहास को आइए आपके साथ साझा कर लेते हैं। 306 ईस्वी में इसी दिन कॉन्टेस्टाइन प्रथम को उनकी सेना द्वारा रोमन सम्राट घोषित किया गया था। एक ऐसी घटना जिसका रोमन साम्राज्य और ईसाई धर्म के उदय पर गहरा प्रभाव पड़ा। 1139 में ओरिक की लड़ाई के परिणाम स्वरूप काउंट अल्फांसो प्रथम को पुर्तगाल का राजा घोषित किया गया, जिससे राष्ट्र की संप्रभुता स्थापित हुई। दोस्तों, 864 में चार्ल्स द बाइल्ड द्वारा जारी पिस्ट्रेस के फरमान में बाइकिंग्स के खिलाफ रक्षात्मक उपायों का आदेश दिया गया, जो युग के चल रहे संघर्षों को दर्शाता है। साथ ही 1446 में राजा हेनरी सिक्स द्वारा कैम्ब्रिज में किंग्स कॉलेज चैपल की नींव रखी गई, जो इंग्लैंड की सबसे प्रतिष्ठित मध्ययुगीन इमारतों में से एक बन गई। और दोस्तों, अभी अभी मौसम की एक जानकारी मिली है, ये कहा गया है कि मैं आपको ये सूचना दे दूं, तो ज़रूर दूंगी सूचना, क्योंकि बारिशों का मौसम है और ऐसे में सब तरफ पानी पानी पानी है। तो आइए आज की एक जो खास सूचना है मौसम की, वो आपके साथ साझा कर लेते हैं। 8:28 से अगले 2 से 3 घंटों के दौरान पश्चिम मिदनापुर, झारग्राम और दक्षिण 24 परगना के कुछ भागों में 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार के साथ हवाएं चलेंगी, हल्की से मध्यमतर, और कहीं कहीं मध्यम से हल्की से मध्यमतर गरज के साथ और बिजली की कड़क के साथ कहीं कहीं बारिश होने की भी संभावना है। ये थी मौसम की जानकारी। और आज दोस्तों एक खास दिवस और भी है। जी हाँ, आज 25 जुलाई है और इस दिन को विश्व डूबने से बचाव दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब मैंने ये दिन आपको क्यों बताया? जी हाँ, इसका कारण है कि आप भी फ़ोन लाइंस के पास होंगे और सोच रहे होंगे कि मेरे साथ बात करें, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज हम इसी विषय को लेते हैं। बिल्कुल दोस्तों, हमारे यहाँ काफ़ी सारे वाटर स्पोर्ट्स हैं, जी हाँ, जो कि पानी के खेल हैं, जिन्हें कि हम अपने दैनिक जीवन में या फिर कहीं घूमने सैर सपाटे पर जाते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, तो इन खेलों को करते हैं। लेकिन हम इससे पहले ये नहीं सोचते कि ये जो खेल हम करने जा रहे हैं, इससे पहले हमें क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए, या फिर कोई व्यक्ति डूब रहा है तो उसे हम कैसे बचा सकते हैं, इसके प्रति हम लोग जागरूक थोड़े से कम हैं, है ना? तो क्यों ना मैं आपसे पूछ लूँ कि क्या क्या करना चाहिए, क्योंकि आप हमसे ज़्यादा जानते हैं और अच्छी अच्छी टिप्स भी दे सकते हैं। तो आज मैं आप ही के साथ टिप्स लेने वाली हूँ कि यदि कहीं वाटर स्पोर्ट्स है तो क्या क्या खास सावधानियां बरतनी चाहिए, और यदि कोई डूब रहा है तो उसको कैसे बचाना चाहिए। आपकी बात आपके ही दोस्त ज़्यादा अच्छी तरह से समझेंगे और मानेंगे भी। तो मेरे साथ जुड़ जाइएगा 2242-7912 पर, और हम बात करेंगे विश्व डूबने से बचाव दिवस की। लेकिन फ़िलहाल तो मैं एक गीत सुनवाने वाली हूँ, फिल्म हत्या का।

जी हाँ दोस्तों, नॉन स्टॉप गपशप में एक बार फिर से स्वागत करती है आपकी दोस्त सविता। और खूबसूरत नगमों की बारात लेकर के हम आ चुके हैं और महफिल सजी हुई है और हमारे साथ हमारे एक श्रोता भी जुड़ गए हैं, तो देखते हैं वो क्या कहते हैं। हेलो हेलो हेलो, हमारे साथ हमारे श्रोता जुड़े हैं लेकिन फिलहाल वो कहाँ चले गए बता नहीं सकते हम, उनको खोज कर लाना पड़ेगा अगले गीत के बाद। तो दोस्तों हम फिलहाल बात कर रहे हैं, 25 जुलाई को विश्व डूबने दिवस मनाया जाता है और इस दिवस पर क्या खास होता है ये हम आपको बताने वाले हैं, क्योंकि अप्रैल 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव वैश्विक डूबने से बचाव के माध्यम से घोषित विश्व डूबने से बचाव दिवस प्रतिवर्ष 25 जुलाई को मनाया जाता है। यह वैश्विक जागरूकता अभियान परिवारों और समुदायों पर डूबने के दुखद और गंभीर प्रभाव को उजागर करने और इसे रोकने के लिए जीवन रक्षक समाधान प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करता है। दोस्तों करीब माना जाता है कि 2,236,000 लोग डूब जाते हैं अनुमानतः प्रति वर्ष और 5 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों की मृत्यु के 10 प्रमुख कारणों में से एक है। डूबने से होने वाली 90% से अधिक मौतें निम्न और मध्यम आय वाले देशों में नदियों, झीलों, कुओं, घरेलू जल संग्रहण पात्रों और स्विमिंग पूल में होती हैं, जिनसे ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे और किशोर असमान रूप से प्रभावित होते हैं। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक कॉलर, तो देखते हैं वो क्या कहते हैं। हेलो हेलो तो दोस्तों वो हमारे साथ जुड़े थे लेकिन किसी कारणवश उनकी लाइन कट गई और हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और विश्व डूबने से बचाव दिवस की बात कर रहे हैं। यदि आप हमारे साथ बात करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि हमारे जो जल क्रीड़ा से जुड़े हुए स्पोर्ट्स हैं वो किस तरह से हम उनको उपयोग करने से पहले, उनको खेलने से पहले किन सावधानियों को बरत सकते हैं और यदि कोई डूब जाए बाई चांस तो उसको कैसे बचा सकते हैं, इस पर आप अपनी बात रख सकते हैं, हमारे दोस्तों के साथ साझा कर सकते हैं। और फिलहाल हम आपको सुनवाएंगे एक गीत, उसके बाद जी हाँ उसके बाद हम बात करेंगे विश्व डूबने बचाव दिवस पर।

0: फिल्म बिच्छू का ये ट्रैक आपने सुना, आवाज़ें राम शंकर, शंकर महादेवन और राज की आवाज़ों में, गीतकार समीर, संगीतवाद किया आनंद राज आनंद ने, और हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक कॉलर, तो देखें वो जुड़े हैं या नहीं। हेलो,
1: हेलो,
2: गुड मॉर्निंग सविता जी।
0: गुड मॉर्निंग, चलिए शुक्र है खुदा का कि आप जुड़े हुए हैं।

0: मैं मुनीरुद्दीन लश्कर बात कर रहा हूँ, दक्षिण सकाई लाहौड़ से।
1: जी मुनीरुद्दीन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, बताइए कैसे हैं?
0: बहुत अच्छा है, और सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इतना अच्छा अच्छा गाना बजाने के लिए, और सुबह सुबह हमारे मन तन खुश करने के लिए, और इतना एसेंशियल टॉपिक लाने के लिए।
1: जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपको टॉपिक पसंद आ रहा है और गाने पसंद आ रहे हैं, कोशिश यही रहती है हमारी।
0: और टॉपिक के बारे में मैं यही बोलना चाहता हूँ
1: जी,
0: जो डूब जाए तो सबसे पहले हमारे सबको सांतर सीखना चाहिए। सेम। और जैसे कि जो डूब जाए, जो उसका बचा सके वो उसको खुद ब खुद सांतर जानना चाहिए, लेकिन कुछ कारण से कोई साधन ना जाने तो लाइफ सेविंग, जो वाटर लाइफ सेविंग बेस्ट है वो पास रखे थे, बहुत अच्छा होगा
1: जी।
0: इसके अलावा हमारे सबके पास टू व्हीलर है, उसका जो टायर है वो टायर पानी में फंसता है, वो टायर कुछ काम देता है वो डूबने के टाइम, टायर के ऊपर चढ़ के वो कुछ सेव कर सके डूबने वाले को।
1: जी जी बिल्कुल सही है। तो आपने
0: और कुछ तरीका है और बंधु बताए
1: जी, तो मनोरुद्दीन जी
0: थैंक यू वेरी मच।
1: तो हमारे साथ मनोरुद्दीन जी जुड़े और उन्होंने कहा कि टायर फेंकना चाहिए, साथ में हमको स्विमिंग तो आनी ही चाहिए, लेकिन दोस्तों यदि डूबता हुआ आदमी है और यदि किसी कारणवश वो नहीं जानते स्विमिंग, तो हम उन्हें कैसे बचाएं, क्योंकि बचाना तो है। तो आपके पास यदि कोई रस्सी है या फिर कोई लंबी कोई चीज़ है जो कि जैसे गाच की बनी हुई बड़ी बड़ी स्टैम्प्स होती हैं, उनको हम फेंक सकते हैं, या फिर डूबते हुए आदमी को बचाने के लिए खुद ना कूदें बल्कि अपना यदि उसका हाथ आपके हाथ तक हो तो अपनी कलाई को उसे पकड़ने की कोशिश करें, या कोई लंबी चीज़ डंडा है रस्सी है कोई ऐसी चीज़ देने की कोशिश करें ताकि वो उसको पकड़ करके बाहर निकल के आ सके। साथ में कोई ट्यूब है जैसे हमारे मनोरुद्दीन जी ने बताया, वॉल है, ऐसी चीज़ें हैं उनको देना चाहिए। ऐसी एक सुरक्षित दूरी बना करके उसकी मदद करनी चाहिए ताकि हम हमारे पास साड़ी होती है, दुपट्टा होता है, लंबी कोई ऐसा कपड़ा है जो कि हम उसके पास फेंक सकते हैं, तो फेंक करके उन्हें बचाने की कोशिश करें। इसके अलावा जब हम उन्हें बाहर निकाल लें तो हम क्या कर सकते हैं मैं बताऊंगी आपको, लेकिन फ़िलहाल एक गीत सुनवाऊंगी और उसके बाद कुछ डूबने से बचाने के उपाय आपके सामने ज़रूर रखूँगी।

0: हम तो यही कहेंगे कि आप मेरे श्रोता नंबर वन है। बिल्कुल, आप हमारे साथ जुड़ जाते हैं, हम जो भी टॉपिक देते हैं, और मेरी कोशिश ये रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन मैं उठा सकूं और अपने दोस्तों से बात कर सकूं। फ़िलहाल जुड़ चुके हैं हमारे एक और दोस्त, तो ज़्यादा बात ना करते हुए झटपट बात कर लेते हैं। हेलो हेलो हेलो
1: हेलो,
0: हाँ आप कौन बोल रहे हैं?
1: फोन में दीजिए, बोल।
0: मैं ऑन एयर आपसे बात कर रही हूँ, बताइए आप।
1: हम बोलना चाहता है, जो जल से जो जो खेल होता है ना, स्विमिंग स्विमिंग वगैरह वगैरह, उसमें उसका प्रोनस का कोई चांस ही नहीं है, वो तो सांसद जानता है। लेकिन लेकिन कुबाडाई में जो होता है, कुबाडाई में, हाँ उसका तो लाइफ जैकेट तो था ही था। हाँ, ये मेरा माने राय है। और मुकेश का कल जन्मदिन हुआ था, मुकेश का एक गाना भी

0: अरूप जी, हम कोशिश करेंगे लास्ट में आपको सुनवाने की मुकेश का कोई गीत। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: शुक्रिया।
0: तो दोस्तों, अरूप जी हमारे साथ जुड़े, और उससे पहले सुप्रिया जी जुड़ी थी हमारे साथ, और उन्होंने कहा कि तैरना जरूर आना चाहिए, यदि तैरना हम जानते हैं तो अपने आप को, अपने जीवन को खतरे में डालने से बचा सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, सुप्रिया जी ने एकदम ठीक कहा। लेकिन यदि हम कोई यदि डूब रहा है और हमने उन्हें बचा लिया है, तो उनको हम सांस लेने के लिए, यदि बेहोश हो गया है और सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो साइड करवट करके लिटा दें ताकि मुंह का पानी बाहर आ जाए, और CPR दें यदि सांस बंद हो गई है, तो छाती को लगातार दबाएं और मुंह से मुंह में सांस दें जब तक डॉक्टर या एम्बुलेंस ना आ जाए। तो इस तरह से हम डूबने वाले को बचा सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, लाइफ जैकेट जरूर होनी चाहिए यदि हम वाटर स्पोर्ट्स करने जा रहे हैं, तो देखना चाहिए कि उन्होंने ठीक से हमें हमारे नाप की लाइफ जैकेट बांधी है या नहीं। मौसम का हाल जरूर पता रहना चाहिए, यदि मौसम में सही है और स्पोर्ट्स के माफिक है तो ही हमें वो वाटर स्पोर्ट्स करना चाहिए, वरना हमको उससे दूर रहना चाहिए। दूसरा है, शराब से दूरी रहनी चाहिए। शराब या नशीली चीज़ों का सेवन करके हमें कोई भी स्पोर्ट्स नहीं करना चाहिए, या यदि करवाने वाला जो प्रशिक्षक है या जो करवा रहा है वो भी यदि शराब पिए तो उस स्पोर्ट्स को ना करें। दूसरी बात है, प्रशिक्षक या जो गाइड है उसके निर्देशों का पालन पूरी तरह करना चाहिए, और ये देखना चाहिए कि जो प्रशिक्षक है, जो गाइड है, वो खुद भी ठीक से जानता है या नहीं, उसके पास सर्टिफिकेट है या नहीं। कई बार लोग ऐसे ही खेल स्पोर्ट्स को शुरू, पानी के स्पोर्ट्स को शुरू कर देते हैं, लेकिन उनके पास प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं होती, प्रॉपर उनके पास सर्टिफिकेट्स नहीं होते, ठीक से चीज़ों की जाँच नहीं करते, चीज़ें जो झूले हैं वो भी यदि ठीक से, कई बार उनकी मरम्मत ठीक से नहीं होती, वो अच्छी अवस्था में नहीं होते, जिसके कारण टूट फूट की स्थिति हो जाती है, नाव टूट जाती है, या फिर जैकेट्स नहीं पहनाते। तो इन चीज़ों के होने पर उपकरणों की जांच पूरी ठीक से कर लेनी चाहिए, होनी चाहिए, तभी हमें वाटर स्पोर्ट्स के लिए जाना चाहिए, क्योंकि हमारी जान है तो जहान है। दोस्तों, बड़ी ही जल्दी से हम एक कोई गीत आपको सुनवाना चाहेंगे, क्योंकि टाइम हो चुका है। फिलहाल परेशान रहने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जागरूक रहिए और खुद की ज़िंदगी के प्रति सचेत रहिए।

दोस्तों मंजिल हमारी अपने मुकाम पर आ पहुंची। नॉन स्टॉप गपशप करते करते कब 10:54 और 45 सेकंड हो गए पता ही नहीं चला आपके साथ गपशप। बस मेरा दिल करता है कि मैं आपके साथ गपशप करती रहूं, फ़ोन कॉल्स लेती रहूं और ढेर सारी बातें करती रहूं कई कई टॉपिक पर। लेकिन लेकिन लेकिन ये घड़ी की सुइयाँ हैं ना जो हमें इशारा कर रही हैं कि फ़िलहाल ली जाए आपसे इजाज़त और मुलाकात हमारी होने वाली है। जी हाँ, सोमवार 27 तारीख को शाम को मैं आपके साथ छायालोक में जरूर मिलूंगी। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए और आपकी दोस्त सविता को कहिए टाटा बाय बाय। लेकिन हाँ, जाने से पहले इतना कहूंगी कि 11:10 पर लो आ गई उनकी याद कार्यक्रम में आपके साथ हमारी मुलाकात होने वाली है। और आज जी हाँ, आपकी हमारी सबकी चहेती पार्श्व गायिका आशा भोसले के बारे में मैं बात करूंगी। तो मैं जानती हूँ कि आप सब यहाँ से शिफ्ट होकर के FM गोल्ड यानी खरा सोना पर जरूर आने वाले हैं अपनी दोस्त के साथ। और हमारे एक दोस्त ने कल मुकेश साहब का जन्मदिन था, उनके लिए एक गाने की फरमाइश की है। हालांकि पुराने गाने हम इस सेगमेंट में नहीं सुनवाते लेकिन उनकी अरूप जी की जो फरमाइश है हमने पूरी कर दी है। तो चलते चलते अंतिम गीत फिल्म उपासना से मुकेश की आवाज़ में। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, सुनते रहिए FM रेनबो 107 पर सविता के साथ।

0: 3:40 स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी कोलकाता 107 एफएम रेनबो दिल से दिल तक में। मैं हूं आपके संग आपकी आरजे भारती और इस वक्त समय हुआ है परियोजना प्रस्तुति का।
1: 107 एफएम रेनबो प्रेजेंट्स परियोजना प्रस्तुति। परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति। परियोजना प्रस्तुति
0: आज परियोजना प्रस्तुति में हम बात करेंगे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की। दोस्तों हम जानते हैं कि शिक्षा ही विकास की पहली सीढ़ी है। किसी भी देश और समाज की प्रगति में महिलाओं की भूमिका अत्यंत जरूरी है। भारत के ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में लड़कियों की शिक्षा की स्थिति को बेहतर बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य समाज के वंचित वर्गों की बालिकाओं को प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा प्रदान करना है। दोस्तों इस योजना को हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की धर्मपत्नी और प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी कस्तूरबा गांधी के नाम पर रखा गया। शुरुआत में ये एक अलग योजना थी लेकिन बाद में इसे सर्व शिक्षा अभियान और वर्तमान में समग्र शिक्षा अभियान में एकीकृत कर दिया गया है। वंचित वर्गों की लड़कियों को शिक्षा प्रदान करना, ड्रॉपआउट दरों में कमी होना और मुफ्त आवासीय सुविधा देना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछला वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय और गरीबी रेखा से नीचे परिवार की बालिकाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करता है ये योजना। सामाजिक बाधाओं या दूर दराज के क्षेत्रों में स्कूल न होने के कारण पढ़ाई छोड़ चुकी लड़कियों को फिर से यह योजना मुख्य धारा से जोड़ता है। दोस्तों कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना से भारतीय ग्रामीण समाज में एक बड़ा बदलाव आया है। इससे बाल विवाह पर रोक लगी है। जब लड़कियां आवासीय विद्यालयों में रहकर पढ़ती है तो कम उम्र में उनकी शादी होने की संभावना काफी कम हो जाती है। इस योजना ने समाज की उस पुरानी सोच को बदलने में भी मदद की है जिसमें लड़कों की पढ़ाई को लड़कियों की पढ़ाई से अधिक प्राथमिकता दी जाती थी। आवासीय परिसर में बालिकाओं की सुरक्षा और देखभाल का पूरा ध्यान रखा जाता है जिससे माता पिता निश्चिंत होकर अपनी बेटियों को पढ़ने भेजते हैं। दोस्तों कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना भारत में महिला साक्षरता और सशक्तिकरण की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम साबित हुई है। इस योजना ने हजारों ऐसी बालिकाओं के सपनों को पंख दिए हैं जो सामाजिक और आर्थिक विषमताओं के कारण शिक्षा से वंचित रह जाती। आज कार्यक्रम परियोजना प्रस्तुति में हमने बात की इसी योजना की।
1: 107 एफएम रेनबो प्रेजेंट्स परियोजना प्रस्तुति। परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति। परियोजना प्रस्तुति

0: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर, टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर, रेनबो पर,
1: 107 FM रेनबो रियल रेडियो पर आप सुन रहे कार्यक्रम तीन का तड़का अपनी दोस्त भारती के संग। और शनिवार की सुबह, जहां आज सुबह थोड़ी बहुत बारिश के बाद थोड़ा सा मौसम खुशनुमा है, जहां आप निकल पड़े हैं अपने मॉनसून वीकेंड को मनाने, तो भाई ज़रूर हमें भी साथ रखिएगा, क्योंकि हम रहेंगे आपके साथ शाम के 4 बजे तक। और अगर आप फिल्म देखने का प्लान बना रहे हैं तो इस वीकेंड पर क्या देख सकते हैं आप अपने परिवार के साथ, तो उसकी जानकारी देने के लिए हम है ना। और अगर आप बॉलीवुड के एकदम कहते हैं ना, वो जो कीड़ा है, जो बॉलीवुड का कीड़ा है, आपको भयंकर रूप से पसंद है, बॉलीवुड से जुड़ी, हिंदी फिल्मों से जुड़ी आपको कई तरह की खबरें देंगे इस कार्यक्रम में। सुनते रहिए, साथ रहिए FM रेनबो के।

फिर हेरा फेरी नहीं, हेरा फेरी से हमने सुना ये गीत के की आवाज़ में, और संग है कोरस। दोस्तों, इस गीत को हम जब भी सुनते हैं तो हेरा फेरी का वो दौर याद आता है जब वाकई में एक ऐसी कॉमेडी फिल्म आई थी जिसने कॉमेडी फिल्म का एक रुख बदल दिया था, और हम लोग सब आगे वी वर लुकिंग फॉरवर्ड कि हेरा फेरी के बाद क्या, वही बोलते हैं ना, मैजिक या स्पार्क फिर हेरा फेरी लाई थी। लेकिन अभी हेरा फेरी 3 का अब उसके बारे में एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है, क्योंकि जहाँ तक प्रियदर्शन की बात है, डायरेक्टर प्रियदर्शन ने इन सारी अटकलों पर कि हाँ रिलीज़ हो सकती है पर एकदम पूर्ण विराम लगा दिया है। कहते हैं कि हेरा फेरी 3 शायद से अब रिलीज़ नहीं होगी या उस पर चर्चा भी नहीं होगी। तो दोस्तों, लेट्स बी होपफुल कि कभी ये दिन बदलेगा, शायद से कभी लोग फिर से सोचेंगे कि इस हेरा फेरी 3 को एक और बार हमारे सामने पेश किया जाए, क्योंकि अगर आई एम श्योर कि अगर पर्दे पर हेरा फेरी, चाहे पर्दा हो, बड़ा पर्दा हो या आपके घर का वो टीवी स्क्रीन ही क्यों ना हो, अगर कहीं पर भी हेरा फेरी फिल्म या फिर हेरा फेरी आती है कि आई एम श्योर सभी लोग एटलीस्ट उस फिल्म को फिर से एक बार देखते ज़रूर है। तो दोस्तों, कार्यक्रम 3 का तड़का में हम बात कर रहे हैं कुछ हमारे हिंदी फिल्मों की ही ऐसी बातें, और न्यू रिलीजेस के बारे में भी बात करेंगे ज़रूर, लेकिन इस गीत के उस पार। फिलहाल हिमेश रेशमिया की आवाज में मुझको याद सताए तेरी।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन

0: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का। टीम का तड़का, टीम का तड़का 107 FM रेनबो पर। टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का 107 FM रेनबो पर। रेनबो पर।
1: दोस्तों, इस वक्त समय हुआ है 3:22 और 7 सेकंड। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम तीन का तड़का अपनी दोस्त भारती के संग। और दोस्तों, मैं रहूंगी आपके संग शाम के 4 बजे तक। और जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जैसे इस मॉनसून वीकेंड को आप जैसे भी मनाना चाहते हैं, इट्स एंटायरली योर्स डिसीशन। तो इस एंटायरली योर्स डिसीशन में अगर आपका डिसीशन ये करता है कि घर बैठे आप शाम की चाय पीते पीते अपने घर में ही फिल्में देखें OTT पर, तो बता दें कि इस हफ्ते OTT पर रिलीज हुई है आदर्श बाल विद्यालय, जो कि एक ऑन एंड आउट बच्चों से संबंधित कॉमेडी फिल्म है। लेकिन बच्चे भी अगर देख रहे हैं तो पेरेंट्स का सुपरविजन यहाँ पे भी ज़रूरी है। साथ ही रिलीज हुई है OTT प्लेटफॉर्म पर मुसाफिर कैफे और फूलन। इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में फूलन ने अपनी पहचान बनाई है और इस बार जल्द डिजिटल डेब्यू की तैयारी में रिलीज हो रही है फूलन। दोस्तों, इसके साथ ही आपको बता दें कि YRF यानी यश राज फिल्म्स की एक एक्शन रोमांटिक फिल्म की घोषणा की गई है, जो कि डायरेक्ट करेंगे अली अब्बास जफर। और इस फिल्म में उन्होंने अहान पांडे और शर्बरी बाग

मुख्य भूमिका में लिया है। तो भी जहां पर शर्वरी विभाग अपनी पॉपुलैरिटी को लेकर आजकल काफ़ी रिमांड पर है और आहान पांडे तो बस उनकी आंखों के तो सभी दीवाने हैं, तो जब ये दोनों एक साथ आएंगे तो क्या ही कहानी होगी। इस वक्त फिल्म हम तुमसे शान और अलका याग्निक की आवाज़ में सुन रहेंगे आप ये गीत। मैं हूँ आपके संग आपकी आरजे भारती।

0: करने की क्या बात है
1: यार? पहले तो पहले भवरे जैसे पास पास मंडरा है, फिर बिजी हूँ ये कहकर तुमको वो टरका समझा करो डार्लिंग, आज बहुत काम है। दूर हुआ तो क्या, दिल में तुम्हारा नाम है। जिस चेहरे पर मरते हैं वो बोरिंग हो जाए, कुछ ही दिन में नजरें इनकी इधर उधर मंडरा। सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं चलती, तुम इंटीरियर डेकोरेशन का कोर्स क्यों नहीं करती?
0: ओके दैट्स इट।
2: That's it. Well, ये गाना जब रिलीज़ हुआ था तो मतलब बहुत ही फनी नोट में एक ऐसे तो बहुत सारे गीत हैं जहाँ पर बहस होती है मतलब हीरो हीरोइन के साथ फिल्म में किरदार को एक साथ बहस करते हुए दिखाया जाता है, लेकिन ये वाली जो बहस थी प्यार वाली नोक झोंक सी, भाई बहुत मज़ा आता है आज भी इसे सुनकर। और इसीलिए तो यशराज फिल्म्स जानी जाती है अपने रोमांटिक फिल्मों को लेकर। ये फिल्म भी थी हम तुम उस दौर की सबसे सुपरहिट फिल्मों में से एक। वेल, इस वक्त बॉक्स ऑफिस का क्या हाल चल रहा है बता दे आपको कि जन नायगन थलपति विजय, बॉबी देओल और पूजा हेगड़े स्टारर इस एक्शन ड्रामा फिल्म ने सिनेमाघरों में धमाकेदार एंट्री की है। पहले ही दिन भारत में से 40 करोड़ से अधिक का शानदार ओपनिंग कलेक्शन दर्ज किया है। धमाल 4 जो कि एक कॉमेडी फ्रेंचाइजी की तरह चौथी फिल्म है धमाल के अंडर, बॉक्स ऑफिस पर 15वें दिन पर भी मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं और अब तक इस फिल्म ने 185 करोड़ से अधिक का कारोबार किया है। तो इस वीकेंड आप अगर आपने अभी तक नहीं देखा है धमाल 4 तो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। द इंडिया स्टोरी है श्रेयस तलपड़े और काजल अग्रवाल की ड्रामा फिल्म जो रिलीज़ हो चुकी है, और फिल्म में खाने में मिलावट और कीटनाशकों जैसे सामाजिक व गंभीर मुद्दों को उठाया गया है। दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम 3 का तड़का, मैं हूं आपके संग आपकी आरजे भारती, और सिर्फ इस वक्त आप सुन पा रहे हैं हमें एफएम रेनबो पर, द रियल रेडियो 107 एफएम रेनबो, और साथ ही न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर। फिलहाल नीरज श्रीधर और कविता सेठ, यस यू गेस्ट इट राइट, कॉकटेल पुराना वाला भाई, कॉकटेल 2 नहीं, 2.0 नहीं, कॉकटेल फिल्म से ये गीत।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम तीन का तड़का, अपनी राजे भारती के संग। और इस वक्त हम बात करेंगे राम गोपाल वर्मा और

मनोज वाजपेयी के रीयूनियन की। भाई पिछड़े नहीं थे वो, लेकिन काम के थ्रू रीयूनियन भी तो हो सकता है ना। जहाँ पे राम गोपाल वर्मा और मनोज वाजपेयी ने एक साथ दी है कई सारी सुपरहिट फिल्में, चाहे वो भीको मात्रे के रोल में दिखे हो मनोज वाजपेयी या फिर साइकोलॉजिकल थ्रिलर कौन में दिखे हो। तो दोस्तों, मनोज वाजपेयी ने कहा है कि वे राम गोपाल वर्मा के साथ कम बैक करेंगे। और कौन सी फिल्म में? हॉरर कॉमेडी पुलिस स्टेशन में भूत से। बोल रहे हैं मनोज वाजपेयी कि ये एक आउट एंड आउट एकदम से कॉमेडी है, लेकिन वाइल्ड भी है। और कहा जा सकता है कि ये फिल्म उनकी पिछले उनके यूनियन फिल्म मनोज वाजपेयी और राम गोपाल वर्मा की जो रही थी, उसी तरह से दर्शकों को पसंद भी आएगी। तो भाई, राम गोपाल वर्मा की बात हो और ये गीत ना हो तो क्या ही हो भला। इस वक्त 3:40 हुआ है समय। आप अपनी आरजे भारती के संग कार्यक्रम 3 का तड़का में

0: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर, टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर, रेनबो पर।
1: दोस्तों, इस वक्त हम एकदम कार्यक्रम तीन का तड़का के एकदम आखिरी पड़ाव की ओर चले आए हैं, जहां हम आज के कार्यक्रम में बताएंगे आपको बॉलीवुड से जुड़ी जो लास्ट खबर आपको देंगे वो है मिस ब्रिगांजा की। भाई, मिस ब्रिगांजा वही जो हमें इस वक्त आज कल दिख रही हैं आदर्श विद्यालय की एक टीचर के रूप में, आदर्श बाल विद्यालय की टीचर के रूप में, जो OTT में इस वीक हुई है रिलीज। लेकिन इस रिलीज के बाद मिस ब्रिगांजा यानी अर्चना पूरन सिंह का क्या कहना है, वो थैंकफुल है, वो धन्यवाद देती है अपने दर्शकों को कि भाई मुझे सभी ने मिस ब्रिगांजा के रोल के लिए आज भी याद रखा है। और वो धन्यवाद देती है उन डायरेक्टर्स को जिन्होंने इतना फेमस किरदार उनके करियर में उन्हें दिया। लेकिन इस फिल्म के बाद, इस मिस ब्रिगांजा के बाद, उन्होंने और आने वाले उनकी रिलीज फिल्मों में से कोई भी, मतलब 20-25 साल भी उन्हें वो वाली जो मिस ब्रिगांजा वाली जो रोल की जो धमाकेदार बात थी वो शायद से नहीं दिला पाई। इसीलिए वो एक्सपेक्ट करती हैं कि लोग जब उन्हें आदर्श बाल विद्यालय में देखे तो भाई मिस ब्रिगांजा वाली बात को थोड़ा सा अलग हटाकर देखे, क्योंकि इस फिल्म में कई सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं, इस फिल्म में कई सारे ऐसे एक्टर्स हैं जिन्होंने अपना अपना रोल का इनपुट दिया है। और अर्चना पूरन सिंह बहुत ही ज़्यादा होपफुल है कि ये फिल्म भी उनकी करियर की सबसे बेस्ट फिल्मों में से एक होगी। भाई होपफुली यही हो, क्योंकि फिल्म के ट्रेलर्स तो बड़े ही चैलेंजिंग है और बड़े ही हंसाने वाले भी लग रहे हैं, जहां पर के मेनन को भी देखा जा रहा है। और बहुत ही हंसी मजाक और बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड है ये फिल्म, जो रिलीज़ हो गई है इस हफ्ते OTT पर। तो दोस्तों, इंतजार किस बात का है, बस एक और गीत का। और इस वक्त अपनी दोस्त भारती को दीजिए यहीं पे इजाजत, मुलाकात होगी आपसे फिर किसी शाम FM रेनबो पर। सुनते रहिए, साथ रहिए 107 FM रेनबो पर आने वाले सभी कार्यक्रम। और जाते जाते आप सभी के लिए कुछ कुछ होता है फिल्म का ही ये गीत कोई मिल गया। सुनते रहिए, साथ रहिए 107 FM रेनबो के। नमस्कार।

प्रोग्राम छाए लोग जाने अनजाने में आपके साथ, मैं आपका रेडियो वाला, मैं अमर। सुनते रहिए, साथ रहिए, बने रहिए टिल 9 PM यानी कि 9 बजे तक हमारे साथ। एक प्योर एंटरटेनमेंट की दुनिया में हम आपको सफ़र कराएंगे, सैर कराएंगे।

फिल्मों के कितने ही अनकहे किस्से जो हम नहीं जानते, हम सिर्फ देखते हैं 3 घंटे की एक फिल्म और अपनी राय दे देते हैं, पर उन फिल्मों के पीछे का क्या क्या घटनाएं घटती है सुनकर कभी कभी हम दंग रह जाते हैं सुनने वालों।

जी हाँ दोस्तों, जाने अनजाने में आपको बता दूं फिल्मों के पीछे की कहानियां। सत्यजीत रे को अपनी फिल्म कांचनजंगा, जो कि 1962 में रिलीज हुई थी, की शूटिंग दार्जिलिंग में चल रही थी और दार्जिलिंग में शूटिंग के दौरान मुख्य रूप से मौसम के बदलाव और कांचनजंगा चोटी के बार बार छिपने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। अनिश्चित मौसम, दार्जिलिंग में धूप, बादल और धुंध पल पल बदल रहे थे। फिल्म के पात्र जिस विशाल कांचनजंगा पर्वत की तलाश में थे, वो बार बार बादलों और कोहरे में छिप रहा था। रे के साथ एक अन्य व्यावसायिक फिल्म दल भी वहाँ था, जो साफ धूप का इंतजार करते करते एक भी दृश्य शूट नहीं कर पाया था, जबकि रे ने अपनी पूरी फिल्म प्राकृतिक रोशनी में ही पूरी कर ली थी।

पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला। आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।

जी हाँ, और मैंने भी कसम खाई है कि आज की शाम आपके साथ, आपके नाम और कुछ ऐसी बातें जो हम में से बहुत लोग नहीं जानते होंगे, बहुत लोग जानते भी होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, बट फिर भी शोले फिल्म की शूटिंग के दौरान टीम को कई बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा था सुनने वालों, जिनमें कठोर भौगोलिक परिस्थितियाँ थी, खतरनाक हादसे और तकनीकी परेशानियाँ भी शामिल है। फिल्म की शूटिंग कर्नाटक के रामनगरम की बंजर और पथरीली पहाड़ियों पर हुई थी। जो शोले तो आपने देखा ही होगा, देखा था किस तरह की पहाड़ियाँ थी, किस तरह की बंजर भूमि थी, जहाँ भीषण गर्मी और पानी की भारी कमी थी। और शूटिंग के वक्त धर्मेंद्र जी ने एक छोटी सी नहीं कहूँगा गलती कर दी थी, और इससे अमिताभ बच्चन बाल बाल बच गए थे। एक एक्शन सीन के दौरान धर्मेंद्र असली गोली वाली बंदूक से फायर कर बैठे, जिससे गोली अमिताभ बच्चन के कान के पास से निकल गई और एक बड़ा हादसा टल गया। गब्बर के रोल पर, यानी कि अमजद खान, शुरुआत में अमजद खान की आवाज़ और अभिनय को लेकर कुछ लोगों को संदेह था कि वे इस खूंखार किरदार के लिए फिट बैठेंगे भी या नहीं। हालांकि इस रोल के लिए डैनी डेंजोपा को ऑफर किया गया था, बट उस वक्त उनके पास वक्त नहीं था, जिसके कारण वो नहीं कर पाए थे और ये रोल अमजद खान को दिया गया था। तो उनकी आवाज़ को लेकर थोड़ा संदेह था कि वे इस खूंखार किरदार के लिए फिट बैठेंगे या नहीं, जिससे उन्हें फिल्म से हटाने तक की चर्चा होने लगी थी। बट जब फिल्म रिलीज हुई तो हम सभी ने देखा कि शायद शोले का असली रोल अमजद खान का ही था, यानी गब्बर का ही था।

फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के इस गीत को आपने सुना कुमार सानू और लता मंगेशकर की आवाजों में। फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे एक बहुत ही सुपर डुपर हिट फिल्म रही और इस फिल्म की शूटिंग के दौरान कई मजेदार हैरान करने वाले यार यादगार किस्से हुए थे। दोस्तों इस ऐतिहासिक फिल्म के सेट से जुड़ी कुछ घटनाएं कैसी थी आपको बताऊं। रुक जा ओ दिल दीवाने गाने के अंत में शाहरुख खान काजोल को फर्श पर गिरा देते हैं। कोरियोग्राफर फराह खान और निर्देशक आदित्य चोपड़ा ने यह फैसला किया था कि काजोल को इस बारे में पहले से कुछ भी नहीं बताया जाएगा। जी हाँ, कुछ भी नहीं बताया जाएगा ताकि उनके चेहरे पर अचानक से गिरने पर जो हैरानी होती है या शॉक आता है वो आए। जब शाहरुख ने उन्हें अचानक गिराया तो काजोल इस सच से बेहद हैरान और नाराज हो गई थी। यूरोप में इस फिल्म की शूटिंग के दौरान एक रोमांटिक सीन के दौरान शाहरुख खान की शर्ट की जिप से एक अजीब सी आवाज आ रही थी। वह इस वजह से शाहरुख और काजोल अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे थे। वे इतनी बार हंसे कि इस सीन को पूरा करने के लिए 17 रीटेक लेने पड़े और कैमरे के 3 मैगजीन रोल खत्म हो गए। इस बात पर निर्देशक आदित्य चोपड़ा और निर्माता यश चोपड़ा बेहद नाराज हो गए थे और उन्होंने सेट पर चिल्लाना शुरू कर दिया था।

डीडीएलजे की शूटिंग के दौरान पंजाब के सरसों के खेत में, जी हाँ दोस्तों, तुझे देखा तो ये जाना सनम जो गीत आपने सुना अभी, गाने की शूटिंग चल रही थी। बिना अनुमति के शूटिंग के करने के कारण वहाँ स्थानीय पुलिस और जमीन के मालिक आ गए थे और उन्होंने भारी भारी हंगामा खड़ा कर दिया था। इसके बाद शाहरुख खान ने वहाँ जाकर अपनी कलात्मक बातचीत और आकर्षण से मामले को शांत करवाया था। यूरोप में कार के अंदर के सीन्स शूट करने के लिए निदेशक आदित्य चोपड़ा कार की पिछली सीट पर छिपे रहते थे ताकि वो एक्टर्स को निर्देश दे सके। शाहरुख खान जानबूझकर कार को अचानक और तेजी से मोड़ते थे जिससे आदित्य चोपड़ा पीछे की सीट पर इधर उधर लुढ़क जाते थे। इसके बावजूद आदित्य चोपड़ा बिना गुस्सा किए चुपचाप शॉट लेते रहे। एक और कहानी है इस फिल्म के शूटिंग के दौरान की। हो गया है तुझको तो प्यार सजना गाने के एक दृश्य में बैकग्राउंड में कुछ बकरियां दिखाई देती है। शूटिंग के दौरान बकरियां बार बार कैमरा चालू होते ही घास और फूल खाने के लिए भाग जाती थी जिसे बार बार शॉट रोकना पड़ता था। आखिरकार मेकर्स को एक आदमी को काम पर रखना पड़ा जिसका काम केवल शूटिंग के दौरान बकरियों को रस्सी से बांध कर एक जगह रोके रखना होता था।

पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला। आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।

लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाज़ों में फिल्म वीर ज़ारा के इस गीत को अभी आपने सुना। 2004 की फिल्म थी ये। वीर ज़ारा की शूटिंग के दौरान भी जी हाँ दोस्तों कई दिलचस्प किस्से, भावुक पल और चुनौतियां सामने आई थी जिन्होंने इस फिल्म को हमेशा के लिए यादगार बना दिया। शूटिंग के वक्त घटी घटनाएं सभी को भावुक बना देती थी। फिल्म में रानी मुखर्जी ने वकील सामिया सिद्दीकी का किरदार निभाया था। जब वो पहली बार टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार शाहरुख खान के साथ बूढ़े वीर वाले सीन की शूटिंग कर रही थी तो शाहरुख को सफेद बालों और झुर्रियों में देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पा रही थी। उनके बार बार हंसने से शूटिंग रुक रही थी, जिससे परेशान होकर डायरेक्टर यश चोपड़ा ने रानी को डांट लगाई और उन्हें कोने में ले जाकर प्रोफेशनलिज्म का पाठ पढ़ाया। फिल्म के क्लाइमैक्स में जब सालों बाद कोर्ट रूम में वीर और ज़ारा का मिलन होता है तो वह सीन इतना भावुक था कि कैमरे के पीछे निदेशक यश चोपड़ा खुद रो पड़े थे। शाहरुख खान ने भी एक इंटरव्यू में बताया था कि यश जी हर सीन को खुद महसूस करते थे और इस सीन के वक्त सेट पर मौजूद हर शख्स की आंखें नम थीं।

107 एफएम रेनबो, छाए लोग जाने अनजाने में आज की शाम आपके संग। मैं आपका रेडियो वाला मैं अमर, उम्मीद करता हूँ कि आप आज की शाम का ये खूबसूरत जाना अनजाना सफर एंजॉय कर रहे होंगे। एक से बढ़कर एक तराने सिर्फ उनके लिए जिन्होंने ट्यून किया है 107 एफएम रेनबो, दिल से दिल तक।

पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक। छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक। छायालोक।

जी हाँ, फिल्म भूल भुलैया से इस गीत को अभी अभी आपने सुना। अक्षय कुमार की साल 2007 में आई फिल्म भूल भुलैया की शूटिंग से जुड़ी कई दिलचस्प और अनकही बातें हैं, जैसे कि चोमू पैलेस जयपुर में शूटिंग, अजीब डरावने अनुभव और विद्या बालन की कथक डांस की ट्रेनिंग। जी हाँ दोस्तों, शूटिंग की अनजानी बातें इस तरह से होती है कि भूतिया महल, जिस महल में इस फिल्म की शूटिंग हुई थी, फिल्म का बड़ा हिस्सा राजस्थान के जयपुर के पास करीब 350 साल पुराने चोमू पैलेस में शूट किया गया था। स्थानीय लोगों का कहना था कि इस महल में राजा का सिर कट गया था और वहां बिना सिर वाला भूत घूमता रहता था। शूटिंग के दौरान

क्रू मेंबर को भी अजीब आवाजें और किसी के होने का एहसास होता था, पर निदेशक प्रियदर्शन इन बातों को नहीं मानते थे। इस फिल्म में मंजुलिका के किरदार और उसके भारी भरकम डांस दृश्यों के लिए विद्या बालन जी ने महीनों तक खास तौर पर कथक की ट्रेनिंग ली थी ताकि उनके हाव भाव बिल्कुल असली लग सके। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस फिल्म की शूटिंग शुरू में चंद्रमुखी नाम के वर्किंग स्टाइल के साथ की गई थी, क्योंकि यह मलयालम फिल्म मंजिल वीरिंजा पुक्कल और मणि चित्रांथजू की का रीमेक थी। गानों की शूटिंग, फिल्म का गाना अल्लाह हाफिज मध्य प्रदेश की पृष्ठभूमि पर आधारित होने के बावजूद कर्नाटक के हम्पी में ऐतिहासिक खंडरों में फिल्माया गया था।

छायालोक जाने अनजाने में आज हमने शेयर किया आपके साथ हिंदी फिल्मों की कुछ सुनी अनसुनी बातें। उम्मीद है पसंद आया आपको। जाते जाते दोहराऊंगा वही बात, खुश रहिए, कल संडे एंजॉय कीजिए, पर दुआओं में अगर उठे हाथ आपका तो एक छोटी सी दुआ मेरे लिए भी। हाँ, आपके साथ अब तक था मैं आपका रेडियो वाला, मैं अमर।

गीतांजलि पता नहीं कि मैं वापस आऊंगा कि नहीं, बट इफ आई डोंट कम बैक दोबारा शादी मत करना।